और दोस्तों, प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़े टुकड़े करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम
1: अरे जाम। तो ये बात है दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन। और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नहीं खत का सोन और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं थी मुकेश का ये सॉन्ग है।

बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बाद जो करते हैं तो हम चलते हैं मौफी के नाम है भरोसा निकटी होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

तारीफ करते है गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निगेटिव थ्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।

आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते और सभी दुखी प्राणियों के लिए, और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं भाई जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती जो ठीक नहीं चल रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, तो ख़ास करके इन दोनों के नाम हम ये भजन पेश करते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुनोरे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। और ये गीत हमने वेरी वेरी स्पेशली चलाए हैं जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और सभी दुखी प्राणियों के लिए हमने ये भजन चलाए हैं। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

दमाई थी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। होता है सुनने वालों, याद ना जाए बीते दिनों की। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं

ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियाँ आपके पास आज है इससे भी ज़्यादा कल हो। जो अभी अभी अपने बिस्तर से उठे हैं उसे हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और ये तो सच्चाई है सुनने वालों। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब रास्ते पर पड़े फूलों ने मुझसे कहा कि दूसरों को ज़्यादा खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। सुनने वालों, ये गीत पहले बहुत ज़्यादा चलते थे रेडियो पर, यानी रेडियो पर, और जब किसी के शादी होती थी या विवाह संस्कार होते थे तो बहुत ज़्यादा ये गीत चलते थे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे।

सुनने वालों, पहले ये गीत बहुत ज़्यादा रेडियो पर चलते थे विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर, शादी के उपलक्ष्य पर। और एक गीत ये भी है फ्रॉम द मूवी साथी से आप सुनेंगे, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किया है सुनने वालों। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। ये तो सच है सुनने वालों कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसा ही है। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर नहीं आएगी। हम सफ़र मेरे हम सफ़र लता जी आपको सुनाने वाले हैं, फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

अभी आप सुन रहे थे हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परिवाज हम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पूर्णिमा। कर ले दिल की बात, अरे कर ले दिल की बात, आज मौका है पता है, यानी पता नहीं है कि ये मौका फिर मिले ना मिले, तो अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कीजिएगा।

कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है। सुनने वालों, पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले, अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने।

अभी आप सुन रहे थे दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फिल्म का नाम है सीमा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जब ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है। मोहम्मद रफी जी के साथ में शारदा जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, शाडा के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सीमा से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, सरस्वती चंद्र है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुकेश जी की आवाज़ में।

हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सरस्वती चंद्र से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कन्हैया है फिल्म का नाम। एक बार फिर से मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: पे।
1: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए है सुनने वालों, गायत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।
2: लेकिन जब उतरता है

दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए है। सुनने वालों, हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, परिवार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परिवार से हमने पेश किए हैं सुनने वालों और आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले मोहम्मद रफ़ी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अनोखी अदा।

0: राकेश नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है?
1: लाइए ना।
0: ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा।

मेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनोखी, अदा से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रखवाला से।

दिल ने दिल से ना जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रखवाला, से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको सुनाने वाले थे तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे।

हमने मुझे देखा होकर मेहरबा तीसरी मंजिल से हमने पेश किया है सुनने वालों, फ्रॉम द यानि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से।

चुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।

हे मानव, अब तू इस अमृत वाणी की मसाल लेकर अपने भीतर और बाहर के अंधकार से निकल, क्योंकि ये अमृत वाणी तेरा कवच भी है और शस्त्र भी। इस अमृत वाणी की मसाल अपने युग के धृतराष्ट्रों, दुर्योधनों और शकुनियों को पहचानने में तेरी सहायता करेगी। इस मसाल के प्रकाश में तू ये देख सकेगा कि अन्याय आज भी उतना ही ढीठ है जितना प्राचीन हस्तिनापुर में था। तू देख सकेगा कि धर्म ने अधर्म की चादर ओढ़ रखी है। हे मानव, तू इनसे हटकर अपना रास्ता बना, नहीं तो ये तुझे भी अपने अंधकार में घसीट लेंगे। तू प्रकाश का उत्तराधिकारी बन, तू न्याय का उत्तराधिकारी बन, तू धर्म का उत्तराधिकारी बन और अपने भीतर की कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना। यही मोक्ष है, यही अमृत वाणी है।

अमृतवाणी प्रेमियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा, परमात्मा सबके लिए दूसरी भाग। आप आए हुए सभी भक्तजनों, आराम से बैठकर इसे श्रवण कीजिए और इसे अपने जीवन में अवश्य उतारने की कोशिश करना। भक्तों, बालकपन में खिलौनों की कामना होती है, पर आज खिलौनों की कामना होती है क्या? होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। इससे सिद्ध हुआ कि कामना छूटती है, कामना छूटती है तो आप दूसरी कामना पकड़ लेते हैं। एक कामना छूटी, दूसरी आपने पकड़ ली, इस तरह आप नए नए कामना पकड़ते रहते हैं। सज्जनों, नए नए कामना पकड़ते रहते हैं आप। अगर पकड़ना छोड़ दे तो निहाल हो जाए, आजाद हो जाएंगे आप, छुटकारा पा जाएंगे आप इस दुनिया की जंजाल से। परमात्मा प्राप्ति की कामना तो कभी किसी की नहीं मिटती सज्जनों, केवल दब जाती है, उसे हम दबा देते हैं। इस कीचड़ और जो कूड़ा हम अपने अंदर में रखे हैं उसके नीचे दबा देते हैं। कीचड़ कूड़ा क्या है? आपका बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे कामनाएं, ये है कीचड़ कूड़ा और इत्यादि। और जो कामना टिकती नहीं उसको तो पकड़ते रहते हैं हम, और जो कामना मिटती नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये हमारी वस्तु स्थिति है सज्जनों, वास्तविकता है और बिल्कुल गलत है। जिसको हम पकड़ना चाहिए परमात्मा को, उन्हें हम छोड़ दिए हैं, और जिसको हमें छोड़ना है उसको हम पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं। उसके लिए हम दिन रात रो रहे हैं। धन दौलत, वस्तुएं, पदार्थ इत्यादि इत्यादि। अरे, परमात्मा की कामना पूरी करने में आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं है। परंतु संसारिक कामना पूरी करने में आप सब निर्बल है, कोई सबल नहीं है, कोई में वो ताकत नहीं है। सब तो फंसे हुए हैं दुनिया के मोह माया में। सज्जनों, आए हुए सभी सत्संगियों, सभी सत्संगी जो हमारे सामने हमारे साथ में बैठे हुए, अब एक सवाल उठती है कि संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों बिल्कुल विपरीत होते हुए भी एक ही जगह रहती है क्या? प्यारे प्यारे अमृतवाणी के प्रेमियों, दोनों इच्छाएं एक ही जगह होती है। जहां भोग की इच्छा है वहीं मोक्ष की भी इच्छा है। भोग की इच्छा पूर्ण होगी और परमात्मा की इच्छा जागृत होगी, जागृत होगी सज्जनों।

संसार की इच्छा को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो, तो परमात्मा की इच्छा आप से आप पूरी हो जाएगी, अपने आप पूरी हो जाएगी सज्जनों। मगर संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, असंभव, हमेशा इच्छा लगी रहेगी, ये हो जाए, वो ले लूं, वो खरीद लूं, वो कमा लूं, वो पालूं, इत्यादि इत्यादि, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे आपके, तो भी पूरी नहीं होगी, बल्कि नए नए पैदा होती रहेगी, नए नए इच्छा पैदा होती रहेगी सज्जनों। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाय। श्रोताओं, तो दोनों विपरीत यानी अलग इच्छाएं एक ही जगह कैसे रहती है, कैसे रहती है? तो भक्तों, एक इच्छा को तो आपने पकड़ा और एक इच्छा आप में स्वतः है, वो आपके पैदाइशी ही से है, जब से ये सृष्टि है वो आप में है, भगवान को पाने के लिए। संसार की इच्छा को तो आपने पकड़ा है और परमात्मा की इच्छा आप में खुद में है, आप में है वो, उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है सज्जनों। मैं सदा जीता रहूं, मेरे में और कोई अज्ञान न रहे, मैं सदा सुखी रहूं, ये आपकी खुद की इच्छा है भक्तों, ये आपकी खुद की इच्छा है, भोगों की इच्छा आपकी खुद की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा आपकी खुद की नहीं है, इच्छा को उत्पन्न करने वाली आप खुद है, आप स्वयं हैं इच्छा को उत्पन्न करने वाली सज्जनों। अगर आप खुद संसारिक इच्छा को छोड़ दें तो वो टिक सकती ही नहीं है, नहीं टिक सकती है। जिसकी पूर्ति होनी असंभव है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए ना, दुनिया के वस्तु पाने के लिए असंभव है, उसको छोड़ दो, परमात्मा को अपना लो, तो जो आपको मिलना चाहिए वो अपने आप मिलेंगे सज्जनों। संसारिक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि संसार नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा इसलिए पूरी होती है कि परमात्मा है, परमात्मा है। संसारिक वस्तुएं कभी सदा नहीं रहती, मिट जाती है, पर परमात्मा सदा ही रहते हैं सज्जनों, सदा ही रहते हैं। इस बात को आप ठीक से समझे, कंठस करो सज्जनों। भूल क्यों गए हो? भूल नहीं गए हो आप, आप जानबूझकर दुख की क्षेत्र पे चल पड़े हो। ये दुनिया एक दुख की क्षेत्र है, दुख की गांव है, और आपके शरीर भी दुनिया के दुख आप बटोर बटोर कर आप खुद अपने शरीर में डाल रहे हो। क्यों, किस लिए? प्रसन्नता प्रभु का प्रसाद है सज्जनों, इसे ज्ञान और विवेक के द्वारा सहेज कर रखना ही बुद्धिमत्ता है सज्जनों। अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषताएं देखिए। अगर आपको कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए सज्जनों, अपनी कमजोरियां को छोड़िए, और वो है कि दुनिया में फंसे हुए हो आप, मोह माया के पीछे भाग रहे हो, यही आपकी मेरी सबकी कमजोरियां हैं, हमको इस कमजोरियां को छोड़ना है, छोड़ना मुश्किल काम है,
मगर असंभव नहीं है। प्यारे प्यारे भाई बहनों, असंभव तो नहीं है। तो संकल्प करो अपने में कि आज से आप छोड़ना शुरू कर देंगे। प्रतिदिन कुछ ना कुछ छोड़ते रहो, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि प्रतिदिन आप एक झूठ कम बोलो, निंदा कम सुनो, कम करो इत्यादि इत्यादि, तो एक दिन सब छूट जाएंगे। मगर शुरू तो करना है, आपको तो शुरू करना है सज्जनों। बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। प्यारे प्यारे भाई बहनों, परमात्मा सबके लिए, ये दूसरे भाग मैंने आपको आज बतलाए हैं। आने वाला मृतवाणी में तीसरी भाग सुनेंगे आप, आखिरी भाग सुनेंगे। मेरी विनती है आपसे कि जीवन में सुख शांति पाने के लिए आपको परमात्मा को अपनाना ही पड़ेगा, और भगवान को अपनाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मोह माया से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने की कोशिश करो, उसका उपयोग करो, जरूर उपयोग करो, मगर उसमें लिपटो मत, चिपको मत। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए आप सभी को, मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

मित्रों, इस बोल के द्वारा जो बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं, हम आशा यही रखते हैं कि आप मुझ पर नाराज ना हो, क्योंकि आज के जमाने का ये हकीकत है। तो इसको जरूर ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। अगर आप इस तरह का है तो जरूर आप पर लागू है। सुनिए और पहचानिए अपने आप को।

हर एक दिल से हमारा नाता है, हर रोज की तरह हमेशा की तरह होगी प्यारी प्यारी बातें और कुछ मीठी मीठी बातें होगी हमसे और तुमसे, और कुछ भजन हम आप लोग क्या सुनाने वाला हूँ। एक घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों, आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो 8 बजे से 9 बजे तक भजन का प्रोग्राम में आपके साथ में करूंगा। तो लीजिए दोस्तों, काफी वक्त हम नहीं लेंगे। ये भी जरूरी बताना चाहता हूं, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा दुलार पहुंचे, प्यार पहुंचे और बहुत बहुत मोहब्बत पहुंचे। जहां पे दुख है हर एक के साथ हम शामिल है दुख में, और जहां सुख में वहां भी हम लोग सब शामिल है। पूरा टीम फाउन की तरफ से आप सभी को राम राम, नमस्कार। एक बार और चलो कुछ हम हनुमान चालीसा से शुरुआत करेंगे और चलो हम मिलकर सुनते, क्योंकि आज भजन का प्रोग्राम है एक घंटे का दोस्तों, जहां तक ये आवाज पहुंचे हमारा मोहब्बत भी पहुंचे।

प्यारे सुनने वालों, आप सब द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे चुन हैं और आज सुबह है, सुबह का प्रोग्राम है। मैं अनिल सारजू इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ और आज भजन का प्रोग्राम है। एक घंटा का प्रोग्राम हम चलाएंगे, सिर्फ भजन ही होगा। और अगले भजन तो मैंने रख चुका है जगजीत सिंह का, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप सुन रहे थे हनुमान चालीसा, उसमें बहुत ही ताकत है और बहुत ही ज्ञान वाले भजन है। इसके सुन के बहुत ज़्यादा ज्ञान आ सकता है। हर लोग जो इस वक्त इस अपने पूजा पे और हनुमान चालीसा को सुनते हैं, सुनते ही रहना, और इसमें बहुत ही ताकत है, बहुत ही ज्ञान है। आगे इस ज्ञान को बांटना हम लोग के काम है, ज़रूर आगे इस ज्ञान को बांटना चाहिए। हे राम हे राम हे श्री राम, चलो हम सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ से।

जहां दोस्तों जगजीत सिंह की आवाज़ में भी आप सुने थे हे राम मंगलवार आज का जो प्रोग्राम है भजन का प्रोग्राम है दोस्तों। चलो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस भजन में कुछ बातें ऐसी हैं जो हर भजन के दिन मेरा मैं इस भजन को आप तक पहुँचाता हूँ सुनाता हूँ। इस पर एक ऐसा बात है कि इस भजन में अगर आप जो रूप में जैसे भी भगवान से प्रार्थना करते ही अगर इसे आप बजा के अपना हाथ जोड़ के आँख बंद करके दो फूल लेके चढ़ाते हैं और पूरा भजन को सुनते हैं हर एक चीज पूरा हो जाता है। इस भजन में एक ऐसा दम है कि हर एक चीज पूरा हो सकता है। हम लोग इंसान हैं और भगवान को बुलाना नहीं चाहिए। ये हे राम यही कहते ही जय जोन रूप में हमें पुकार बकी बुलाओ एक फूल लेके अर्पण कर और हे राम करके मुझे बुलाओ तू ही माता तू ही है पिता है। ये भजन में कुछ बहुत इस ऐसा दम है कि सोचने वाली बात है हमारे सुनने वाले कुछ तो बात है इसमें। ठीक है चलो हम आगे आप लोग करे जाते हैं आप एफ अग्रीन फोन पे चुने दोस्तों।

मैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थी यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है

नहीं चला यह तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं।

माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई,

नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं।

असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो।

माँ कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी।

और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया है। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्द

की आवाज अभी आप सुन रहे थे, मैं नहीं माखन खाई। ये गाना कुछ सरस्वती अमृत के गाना था, मैंने इसलिए इस गाने को सुनाया है कि आप देख सकते हैं कन्हैया ने अपनी माँ से सरस्वती अमृत झूठ बोला है, सरस्वती अमृत बात तो भी कन्हैया ने सच कहा है, मैं नहीं माखन खाया दुनिया भर के बबाल से बतियात बतियात। लास्ट पे कन्हैया बोलिस मैंने ही माखन खाया है, ये कुछ दम ये झूठ है, ये दो तरीके का झूठ है, एक झूठ है जो झूठ बोलने बोल सकते हैं और एक झूठ है जो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे और कृष्णा के फिर एक भजन है जो जगजीत सिंह ने गाया है।

जी दोस्तों, भी आप सुने थे हरे रामा हरे कृष्णा, ये भी भजन है जो हम लोग सुन सकते हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। चलो हम आप लोग को सुनाते हैं एक बार फिर से अनूप जलोथा को।

तौबा मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रोग्राम को अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा, जीना तमन सीना तमन ने काम किया है देव अनंत जीना तमन और आशा भोसले की आवाज़ से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एफर ग्रीन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, दम मारो दम। अभी आप सुन रहे थे दम मारो दम, और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो शंबा हो। चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिलके इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जी हाँ, रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पप्पी लहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पप्पी लहरी का ये डांस नंबर है याद आ रहा है। पप्पी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पप्पी लहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

देखना दोस्तों पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती, याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं डीलर मेहंदी की तरफ, और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुखवार है, वीकेंड आ गए हैं, रेड पुश हो या ब्लैक पुश हो उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए, क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तू बल्ले बल्ले, दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोग सुनाते हैं। देखा जाए तो बोल तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपको सुनाते हैं बोल तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। देखा जाए इसमें तो है कुछ, और हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा से कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सूर्य थे, चलो हम चलते हैं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमत रहमतुल्लाह बरकातु हो और खुदा हाफिज हो। हर एक को जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम ज़रूर विदाई लेंगे। दिन तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कोलेगा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन सिस्टर का फिल्म है मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं। और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है, तो ठीक है। एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे। एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं, हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, मेकर का है जे। फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता निकलती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं करी तो इस शस्त्र का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई कंचन ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी हम आप लोग के लिए चलते नई कंचन वैफन शस्तक में। जौहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंतीन फाइव तक में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, सुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5/6 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अल्लाह जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिल के हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखा में बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन ना सुन ली है और बहुत मन की सुनत काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सबके नाम है दोस्तों।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं, और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज है किसी राह में किस मोर पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ। नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों।
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

जहाँ दोस्तों मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज से ब्याह सुर रहे थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों हम आगे चलते हैं प्रोग्राम आप ही तो हम हैं आप नहीं तो हम नहीं हैं और आप सब चुन है द एफ अगेन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जरजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं जो प्यार से गाया है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एर्दे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे ही सुनते रहना। ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग मेरी कंती एन एन सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने अभी गीत को सुना है। और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले संस को लगा ही चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण नहीं कहती नाथन शस्त्र का है यार। और वो देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंतीन एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मोहल्ले की लता मंगेशकर का आवाज है और सब कोई सुने कोई जा मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिलके सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। मूवी दर्द 1981 का, जिसमें हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर 1982 का, जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर। म्यूजिक शंकर जयकिशन और लाइरिक्स से सई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर 1962 का। चलो हम आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज़ है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आज़ार मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिल के सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

तेरे इश्त का मुझ पे हुआ है असर। आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज से मूवी नागिन निकली सेशन ज़ैफ़न तक का है। ठीक है दोस्तों, मैंने वक्त से पूछा मेरा क्या कसूर था। वक्त हंस के बोला कसूर तो कुछ बड़ा नहीं था, बस तूने हर किसी को दिल से अपना समझ लिया और जिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कसूर होता है। जहां हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है, हाय तुम दिल से जीते रहा है और लोग मतलब से याद करता है, दिल से नहीं। ये ऐसा होता है हमारे प्यारे सुनने वाला, शायद बोलने में कुछ गलत हो गया, ये ऐसा होता है। आपकी खिदमत में मैं हूँ अनिल जारजू और आप सब द एफगे लॉ फाहौन हिंदुस्तानी पिचून हैं। देखा जाए तो अभी हम आप लोग के

आप ही का हैप्पी स्टेशन 5 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तारकंड में मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 0 7 5 2 8 4 0 या 0 7 3 7 2 0 0 तारकंड नंबर है। शान दोस्तों, शान एक गायक है लेकिन शान को एक बैंड एक ग्रुप भी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान, मिस्टर शान की मीठी आवाज में अभी आपने सॉन्ग को सुना, फावन हिंसानी दुबाप चुन है दोस्तों, उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा तो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण पद्मश्री। उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरे, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलांद। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द डायरेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीख न अमदर प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबू बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ भी किया जाहिर किया करने को, इसलिए कि स्क्राइफर एक स्क्राइफर जो है वो बैठकर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूं क्या लिखूं, और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

तेरे बिन दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना, बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम की बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पान स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वैसे सबसे मौच कफाला, तो वो जवाब देने लगा, फिर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चल गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक, और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फरदाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जो लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1969 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज, दोनों फिल्म में काम किया, और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप

नील गगन के तले धरती पर पांव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है, अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठी आवाज में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का सब है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, उन्हें सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। कई गाना वो गाए है, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिंग आतन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे, लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तरी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलके सुनेंगे फिल्म तरी पार का सॉन्ग आज दिल के बात। आज पहली बार दिल के बात की है।

हर एक काम जो रिव्यू किसे लेकर आना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टैक्ट कीजिए फाहौर हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर से न्यूज सीफन तक 3 से 5 2 8 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

न्यू सॉन्ग मैं पेश करूंगा दोस्तों, 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुन

यार है नया एहसास है आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाजों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: जानदा नहीं मैनू नेहा कक्कर हूं मैं
1: कक्कर हूं मैं क्या बात है हाइड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव

सेलेक्टा बीट्स शो बैंड, सेलेक्टा बीट्स शो बैंड बॉबलिंग मैशअप। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा कि यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ दोस्तों, हम यार है तुम्हारे।

हम यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहड़ी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्र का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं सैसन तक तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika Happy Station Far Horn Hindustani Radio, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा। तो अरिजीत बर्मन का सॉन्ग है, राजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना, उन दोनों में एक राजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था, सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं एक दूसरा अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में। राजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था।

वही

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाज़ों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, ये है पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को, तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया, जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्रा से कहा, जितेंद्रा 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दो। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता है, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल तो चाहता है एंगलत तुई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमार लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक गंगा, और कुल घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे।

दिल की बातें दिल ही जाने, लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना, 1972 का नेहन तीन त्वेन सेवन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाएं फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ तक का ये गीत है। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। आप सुनोगे, मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सही बंदक का ये गीत, 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 405 तक या 55 तक, बहरहाल रोंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीबे तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले हैं एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारी सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं कि सिलसिला हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

0: पंछी रे वो पंछी, रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाए हैं और फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हमने चलाए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं लिखा है लेकिन साथ से पता चलता है कि शंकर जयकिशन के साथ पर हम ये गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है, ये धमाकेदार ये है।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए
0: क्या
1: थोड़ी

क्या बात है, ये शानदार प्यारा द्वैत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए प्लेयर में हमने गीत रखे हैं। कहाँ गया? जी हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, माइत मुकेश, माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाला है इस तरह से।

0: ये किया किया रे दुनिया वाले फिल्म में से हम निकाले 1969 का ये फिल्म है और हमने पेश की उफरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत, जी हाँ, सोनी कोमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाले हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो प्रेम पुजारी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पुजारी में देवानंद का कास्ट है और वहीदा रहमान, तो ये प्यारा गीत हम आपको सुना दें। बहुत ज़बरदस्त गीत है, कौन संग्रेस ये गीत नहीं गाए हैं इस तरह से।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

जी लता जी, आपको सुनाए रंगीला रे फिल्म प्रेम पुजारी में से हमने ये गीत निकाले हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। हाँ, फिल्म वो दिन याद करो, फिल्म वो दिन याद करो में से निकाल रहे हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस और लता जी।

मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे है जवानियाँ। ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाहौन हिंदुस्तानी आप चुन है फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए मैं चला रहा हूँ, आपको चला भी नहीं रहा सुना भी रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर फिल्म अनीता में से निकाल कर। ये एक डरावनी फिल्म थी लेकिन इतना डरावनी नहीं थी, बहरहाल थोड़ी बहुत डरावनी थी। फिल्म अनीता में से निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

ना बाबा ना बाबा पिछवारे बुढ़ा खास ताल लता जी आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता, फिल्म अनीता में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और अनीता जी के बाद, नहीं फिल्म अनीता जी के बाद चलो हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है रवि साहब की आवाज़ में जाना पहचाना गीत, जानी पहचानी आवाज़, जानी पहचानी संगीत है।

वाह क्या बात है, ये छेड़खानी वाली गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलते हैं, मैं तुम्हें कैच द हार्ट ऑफ मिलियंस आशा जी के साथ एक बार मुस्कुरा दो निक दी तुम से ही। तो 1972 का ये फिल्म, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म का म्यूजिक दिया गया है ओपेन नैयर के जरिए। जरा देखो तो सही है, जी हाँ सही है।

दिल भर जाने दिल तोड़ तोड़, आशा जियो मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में से निकाल कर नहीं तीन सही तक 1972 का ये गीत हमने पेश किया ओपी के साज पर। अगर ओपी ही से हम चल रहे हैं तो लीजिए एक बार फिर ओपी नैयर के साज पर, इस बार आशा जी ये धमाकेदार गीत फिल्म होंगकोंग।

यही गति 1962 फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं और ये गीत चला ओपन एयर के साज पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं प्लेयर में हमने ये गीत रखे हैं तो क्या ख्याल है। इस तरह से मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत आपको सुनाएं ओवर फावनी रस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सेपी रात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, बह पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा, जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ओवर फावनी हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की नेगेटिव सेशन सेस्त का ये गीत, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं फिल्म जंगली में से निकालने हैं शंकर जय किशन के साथ पर ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली गई। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओ फॉर फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर निकले एने सैफ तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साथ पर हमने आपको सुनाए हैं। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

जी उदित नारायण और साथ ही मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की मोहब्बत में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, क्या बात है, एवरग्रीन जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तान। तो अगर आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहां भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं, और वीफी द्वारा वहाँ पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

0: कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए नाम सच्चे काल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार के पैगाम। दोस्तों अभी आप लोगों एक प्रोग्राम को सुना है, वो है हमारे कुलेखा साथी गंगा जी से, और हमें आशा उम्मीद है कि आपको उसका प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा। आज हो चुका मंगलवार दोस्तों, 16 जूनी है, और घड़ी को और देखा जाए तो 8:06 शाम को हो चुका है, मंगलवार है 16 जूनी। और जैसे आपको पता है हर मंगलवार को हमारा प्रोग्राम लाइव हम चलाते हैं, तो अभी हम आप लोग को देश विदेश के समाचार एक घंटा आप लोग को हम सुनाएंगे करीब 7 बजे तक। तो दोस्तों हम तुरंत और तुरंत चलते हैं, वो है सूरीनाम के ओर। हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, आप लोग जानो है जब से NDP का रखेरिंग आयल है दोस्तों, जब से NDP का रखेरिंग जैसे आयल है तो इखरान कॉन्फ्रेंसी के बारे में आप लोग जानो है, जो चांद सतोखी ने बनाए थे अपने जमे पे कि लोग अपना जो जमीन है यानी लांटी जगह जो उसको मिला है वो खरीद सकते हैं लांटी से, यानी एकन दोम बना सकते हैं। तो इसमें करीब 15,000 लोग अपना अपना जमीन को और यानी कि जाकर खान कॉन्फ्रेंसी का एक दोम कर लिया, लेकिन जैसे ये नया रखेरिंग आयल है भाई खलैक ओके स्टॉप कर दी इसकी दर मखेल मालेट स्टेर कर नोक बेस्टमैन से जो मिनिस्टर हैगा खेबीबी का, वो ये कह दिया है कि बोले कि जितना आदमी जगह पाई से बोले पैसों बोले सब लौटारे जो ऐखन दो में बोले वो फिर लांटी के हो जाएगा। तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भेल है, तो एंड लग वो का बोले मिनिस्टर का बोले है फन खेबीबी के, और वो बोले है बोले ना बोले कि बतिया ऐसे ना है बोले जो आदमी के रोंत हो चुकल है जेके एखन दोम कागज मिल चुकल है सगरो तेकन हो चुकल है बोले ओके हमें ना माखेगा तुरख द्राई करे, बोले रखा नहीं बोले बाकी जोन के अभी तुरख द्राई ना भइल है और पैसा तो भर दे ले बाटे, मतलब कि जेकर अभी ना रोंत भइल है और तू पैसा भर दे ले बाटे का बोले है सेंट्रल बैंक में बोले ओकर पैसा बोले हम तुरख देवे जोने तो सखवा दोरो ना जाए। तो ई रखेरिंग NDP और गगरी रुसलांद की रखेरिंग हैगा, और सब क्वालिटी जितना क्वालिटी के आदमी है ओ मा पेयल है बेफर दुनिया भर के भैया है लखरूप है सब मिलजुल के ये सब काम करी, इस वहाँ क्वालिटी में खाली बपाल NDP ना करे है सब कोई एक बारे में NDP के और नेक आंध्र पड़ता है जो सामो वैर करे सब माँ एक बारे में देखो क्या हुआ है, बड़ा जबर घीचा तानी हुए भैया। तो एगो नोतारस है जेकर नाम बा जयनंदन सिंह, नोतार जयनंदन सिंह जो है वो एकर बार कार्लो जयनंदन सिंह एकर बारे में का बतावे तरी सुना जाए तो
1: versie. Maar daarvoor moesten er uitvoeringsbesluiten gemaakt worden. En dat duurde op ieder geval erg lang. Was in 2009. Ja. En toen trad de regering Venetiaan af. Ja. Is het in de ijskast gebleven. En in 2016. Ja. En dat weten velen niet. En terwijl het bekend moet zijn. Is de eerste grondconversie onder leiding van Hoefdraad. Dus ja. De regering Boetboot. En het is niet dat ze tegen waren. Maar ze hadden hele hoge tarieven. Je betaalde 30, 40 euro ja. per vierkante meter.
2: Dat
1: heeft ook een halve euro van gemaakt. Maar ja. oké, maar bijna niemand deed dat.
2: Ja.
1: En dat is dan weer opgenomen tijdens de regering Santokki. Brunswijk zei het dat Brunswijk ook niet wilde meewerken. Dus Santokki heeft dus op basis van een nieuwe grondconversiebesluit,
2: ja.
1: maar gebaseerd op de wet. Dus het is helemaal conform, dat garandeer ik hoor, is dat gebeurd, die conversie.
2: Nee.
1: En als er eenmaal geconverteerd is volgens alle wettelijke regels, kan je dat niet terugdraaien. Het werd.
0: Dus je baantje tegen je notaris Carlo Jenenen Singh. Je hebt betaald dat je je wet hebt. Je bouters ke tijd se bhi saban enkel raha, finishian bhi enkel raha, baki usab ke jo per firkanta meter raha, usab ke price bahut uncha raha, bena 40 euro per firkanta meter tu ubechat raha, aur koi na kini bhaiya, utra mahanga admi ke paiso bhi chahenge tu, पर जब तो के जाए के खरों कॉन्फ्रेंसी से फिर तक यूरोपियर फिर कांत मेहतर को जगह की ने घाईगा तो बेचरे तू जा क्लार खमा के वो किले ना तो समय पे कोई ना किरत रहा लेकिन इच युवा चल गए रहा फिनिशियन भी इन कर ले रहा उकर बांत में बाउटर्स के रखेरिंग भी कर ले रहा और जो हुफ दरार भग गए आज वो मांगत रहा इतना में बेचे इन लग कोई ना करे तो संतोखी जले ही सेगा तो सस्ता में करे जो ने जनता के सीकर है इतरे अपन जमीनिया किन ले वे जे माँ वो रहे हैं तो अब जी ई रखे रहे हुआ आयल थे एक के बंद कर दे से सोचे संतोखी के हैं और यहाँ जैसे जनरल सिंह बोले हैं बोले ई जितना चाहिए फोकस वेत काम भइल है इमा इको इली खाले वाला चीज के कारभार ना भइल है जनरल सिंह वेत ओक ते रखे रहे बहुत से खबर एक कमा फने सेल्फ द मोकलकेट ओम खरोत ऑफ द सेटन आर एक दो मेंस बोले फर्स्ट इरा द कोस्टन द स्टेज नाम अन सिंगल होकर वास Pas onder president Santokki werden tarieven fors verlaagd, waardoor veel meer burgers een aanvraag indienden. En voor de rest is helemaal niet dat je Stanley Suropawiro via grond- en bosbeheer kreeg om gelden terug te betalen aan burgers. Bole een paiswa, bole terug maar 15.000 admitoleetjukel he. Sinds de invoering van een goedkopere regeling hebben meer dan 15.000 personen een aanvraag ingediend. Jema 659,5 miljoen SRD staatskas mee eigen hem. Ab batia ie bhaiya, ie चकल्लेस अब देखो जननन सिंह भी बोले हैं और हम भी बोलेला 300,000 से ज्यादा अने साक लड़े हैं ही भी अपरे के तो ओके कहां से पैसा रहेगा इस सब के भरे के भैया वो देखो जनन से कम ही भी ऑन द दोषी न्यू ऑल मैन अन सिंगलिक फाइनेंशियल फॉरप्लेटिंग है एट ऑफ ध्वंग सोमन टेकन द Ondergrond vraagt hij zich af hoe de overheid denkt om te gaan met de belangen van de duizenden burgers die op basis van bestaande regelgevingen kosten hebben gemaakt en verwachting hebben gebouwd. Natuurlijk, het moet er kosten krijgen. Daarnaast wijzen ze op dat personen die wel een beschikking hebben ontvangen, maar nog geen eigendomstitel in handen hebben, juridisch gezien mogelijk nog steeds in aanmerking komen van een conversie zolang de beschikking geldig is. Daarmee lijkt het hoofdstuk rond de grondconversie voorlopig nog niet afgesloten. De itra dheer karja hai, matlab ki bhare kahega GBB ke, straks een strafrechtzaken ke en zo, aur umange adamien ke paisa lautare, dat lijkt me heel erg sterk, maar ja, aur bapa, isab ke apre paisa na hai, aur usab mange, Kabul he, subgrond inspectie ke, jekar afrond na he, terugdraai kere, dit kan niet. Ab deko, ham jaila bhaiya, jon admi hansu ke boot, idhar udhar ke boot chalawe he, meer sorak ke lios, berak ke boot jor pa, bole, 5 baris se usab ke lanti paiswe na bhari se, subsidi na bhari se lanti bhaiya, bole, the boat owners, houders, jon bole, 5 baris se ham luk ke, paisa na milal he, jon lios berak ke, aur ka बोले कमोवेइन के boothouder zeggen. Of bole na meer dan 5 bole subsidie paisa bole hem nou na pahle usap eis kare manger ke ki jon ane minister hetei zeitei ke Raymond Landfell van transport communicatie ke bole he usap ke chai bhare ke oe ma NDP ke parlementariye he Ansadi voorzitter hega yani ki VBSD ke yani ki transport ke Botien ke bole zijn de boothouders niet aangesloten zijn bij deze vereniging. De meest geduldige boothouders in zijn naam. Dus ondanks worden zij keer op keer gediscrimineerd wanneer het aankomt op de betalingssubsidie. De NDP ke DNA bole he. Op bole 5 barisse bole ki verhoging bij de vorige regering en geen rode cent aan subsidie. En nu zijn ze een jaar verder. Oor bole he minister gebeld. Bole belkeli he. Oor bole he gaan. Sadi bole he zo maar ke begrozen behandeling me. Kies heb ke paisa kab bharai kaise bharai ga. To janta. Suriname is heel erg moeilijk, mensen. Ze hebben geen geld, net als de vorige jaren, en ze moeten alles gaan doen. Ampelun jano, jetran me jungle angel ja, en bolem jala muru kriki, bhaiya, ketran me ja muru kriki is lakdi nikare, ketra admi sona khode, bhaiya muru kriki jungle hai benelant hai ga. Hum na gali bhaiya, baki jaisi ya foktuk dikha hai, ki admi lo sona hona nikare, baki sipahi bole hai, surjati bole hai, bole muru kriki me jetra admi ke hua konsesi hai, bole sab ke chahi chhod ke bhaag jai ki. Sipahi bole muru kriki के शुक्रवार 19 जून तक सबके चाहे अंतरिम हो जाए के ब्रोकोपोंडो मुरुक्री की कौन सी जो ब्रोकोपोंडो में और बोले मुतन है ट्रेन अगले 19 तारीख जून के 8 बजे सवेरे फॉर लीडर चाहे अंतरिम कर लेके एक बोले है अंतरिम फन कोर्स पॉलिसी श्रीनाम रीक्यू मेने श्रीनाम बोले उखबितवा जोन हैगा कंसेसी रूसवेल गोल्ड माइंस के Bole het gebied maakt volgens de aanzegging deel uit van de concessie van de Rosebel Gold Mine. Kehe. De aanwezigen worden opgedragen hun kamp direct af te breken, alle materialen en persoonlijke bezittingen mee te nemen en het terrein daarna te verlaten, mensen. Tussipahi Usepke Tim deze, bole Tunaya riskeert dat het gebied zonder verdere waarschuwing wordt ontruimd. Op bole het terratare juni mee, Brokopondo uitgegeven en wordt door de korpspolitie aangemerkt als een formele, rechtsgeldige en bindende aanzegging. De waarschuwing wordt druk op de aanwezigen van het concessiegebied flink opgevoerd. Ze hebben tot vrijdagochtend om te vertrekken. Voordat politie en leger kunnen overgaan tot actie, mensen. De admiron hoa pe concessie paise bhaiya aur gold and mine kehega to ab sab ki jahi ka chhod debe ke jaghaiya. Dosto Amerika aur Iran mein under handling hue hai Strait van Hormuz vrijdag ke chahi khul jaye ke sukke aane wala sukke chahi khul jaye ke farinak dastaten Iran zondag ke raat ke vrede akkoord hoi ge hai Pakistan se premier Shahbaz Sharif meld kari se ga bole hai Amerikaan se president Donald Trump bevestig kar di se Iran ke televisie pe ki Iran Amerika heeft gedongen het vredesakkoord te accepteren de Iranse staatstelevisie meld dat Iran de VS heeft gedwongen. Hoe ik het jullie volle hega. Ki Iran dwingi kari sega Amerika keetje. Je stop karike. Een van de belangrijkste gevolgen van de tussentijdse akkoord is. Ki straat Hormuz jahin sukruwaike in demse kul jayike. De vijfde van de olieproducten gaan door deze zeestraat door. De Iranse blokkade zijn de brandstofprijzen wereldwijd fors gestegen, mensen. Obole hega. Ja, daaronder valt die van de voorwaarden dat de doorvaart 30 dagen na de orde teken weer op een niveau van voor de oorlog moet zijn. Als tegendien zou VS de maritieme blokkade van Iranse haven beëindigen, want Amerika wie Iran kesab havens blokkeer kareba. Iran zou verrijkt uranium gaan verdunnen. Bole hega jo uranium ke bare bole oke pater kariga een belangrijke knelpunt is het verrijkte uranium van Iran. De VS heeft daar grote problemen mee. Trump zei eerder op zondag raadkeer. Bolle geen haast te maken met het verwijderen van het nucleaire materiaal in Iran. Hij kondigde strenge inspectie aan zonder details te geven. Bolle hamlo inspecteer karab kichi yonjo to bomba naite. Maar ja, uranium ze bolle hamlo inspecteer karab aik takab. Wachten op reactie van Israël Hezbollah. Hoewel Israël of Hezbollah abbetaklade niet direct bij de onderhandeling betrokken zijn, staat in de documenten dat er een einde aan de oorlog op alle fronten komt, inclusief de aanvallen op Libanon. Toch heeft Israël herhaaldelijk verklaard Hezbollah te blijven aanvallen. Zondag waren er nog aanvallen over en weer mensen. Amerika, Israël, februari is het lade he. Grootschalig aanval door bijna Iran pe. Sindsdien zijn er aanvallen over en weer in de Midden-Oosten. VS en Iran praten al maanden over de mogelijke vredesakkoord. Je chabat, maar ja, ki jagarawa ruk jai. Tari hambilun telo lapan tari. Tari aur sasta me kien se bhaiya sasta to bahut na he. लेकिन तरी से और सस्ता में अब त्वी एरो त्विन तक है यहाँ पे हमारी जनता अब यहाँ पे महंगा है तेलवा मीन्स सूरीनाम में भैया परमेश्वर बड़ा जोर गुस्सान है और ये परमेश्वर एनडीपी के उधर का बोले गया दिन गुस्सान है बोले हैं डेढ़ घंटा से दुई घंटा लेक उस पार्लियामेंट में बैठ के अगोरी से फरखादर करके और रखेरिंग बहुत अल्लातिक आयल है बोले रखेरिंग बहुत अल्लातिक आयल है और बोले परमेश्वर हाल फ्लिंक ऐना द रखेरिंग लात उस मेर दन अंदर हाफ ईयर वक्तन बोले हम लोग के बैठ के अगरवाई से भैया परमेश्वर डेढ़ घंटा रखेरिंग वहाँ के अगुल्ले बाटे तब तू लोन इतना बड़का हैरी मां का करे है सूरीनाम में आदमी जोन खेत और पहले तो ही लोग के समय पे अनफ्राक करत रहा मर गए अब जगहिया ओकर नाम पेनाइल है 40 बरिस पे 50 बरिस उस अगोरी से बरिसन से अगोरी से अबे कितना आदमी अगोरे और खेतवा का गचुआ कहां कब मिलेगा क्रोम फ्रंट कॉन्फ्रेंसिक तो लो स्टॉप कर देले बाटे आदमी अगोरे है कि कब ई दौरो चलेगा अतुलन अंदर हाफ ईयर में चिल्लाई के शुरू कर देले है जनता ये जा है बेरखल स्टंप में जनता ये कहीं अस्प्राग जा है त डेढ़ घंटा ना दिन दिन भर सोम्स अगोरे है और कोप क्राक फॉर स्टेरकिंग आदमी रोज अगोरे कब हमा पैसा स्टोर्ड होई ओकर बारे में दस तो हेलमाल नेक्स्ट मने परमेश्वर लेकिन ये वक्ती वाला चियुआ जोन है सूरीनाम में बहुत ज्यादा भैया जे कोई से अस्प्राक करियो 10 बजे तो 12 बजे आवे है और सोस बेलवा न करी सोस आईबे न करी दैट हैपिक सेल्फ मी कमांड मींस फिर भी गैली करवाए भैया तीन तीन चार चार गो अने अने इमर से अदमियन कोनो आवे कोनो आईबे न करे कोई बेलवे न करे भाई ऐसे सूरीनाम के चाल है हमारे जनता तो कौन चीज जब तुलो रखेरें के आदमी अस्प्रक से काम ना करे है तो जनता बिचारा हमारे का करेगा Jullie moeten de goede voorbeeld zijn over afspraken in het land Suriname. En dan zijn jullie zelf niet mensen. De abhaya permeser, abhaya gayadin, or orlo kwam pe jon bait kya goratra. Isa bahut gusan hai. Hiya batawe go wet staats begroting banega. 2026 ke openbare vergadering hoega. 10 baje, baki saban 12 baje suru karise bhaiya. Het blijkt dat het parlement meer dan anderhalf uur heeft moeten wachten op de regering en ik er bare mee fractieleider NDP ke परमेश्वर रमीन परमेश्वर बोले कमिशी फोर्सेटर जोन हैगा वेट्स प्रोड्यूक के पार्लियामेंटारियस बोले हैगा वेकन लंग दाखन हेवन खमा बोले एंडाला दरखेरे ओस मेर दन अंदर हाफ ईयर वक्तन वरबाय हेड हेन न्यूलिंग एंड सेन मेंस दी वेटन दैट बे द बखरोजिन बहंडलिंग एंड दुइलक अस्प्राक इज दैट द मिनिमल 7 लीडन फन द रेगिंग अनवेसिंग मुतन सेन फन 7 फन द 19 ओमदैट इक द vice-president en de president meetelt, sprak permissie zeer geërgerd. Ah, maar ja, toen ik er bij hem toen wat aandeelde hem, of willen in alle ernsten die kunnen we niet hebben, willen iets ietsje na hoe ze kunnen. Ik heb zelf voor de president en vice-president president het schema gestuurd, willen toch ze maar laat ik eilen, we hebben nog een hele maand te gaan. Permissie vindt het frappant dat heel wat minister vaak dringend aandacht hebben gevraagd voor de aanvang van de begrotingsbehandeling om hun beleid verder te hebben en implementeren mensen als zelf laat ik eigen dus doen. To ye baat hai hamare pyare pyare janta tab dekho bhaiya hum jai hai tari se an assembly lead Jennifer Fried Samkeur NDP erhega heeft tijdens begrotingsbehandeling vraagteken geplaatst bij de rol van kabinet op bolehega volgens haar moet ki kabinet bolehega beleidscoördinatie en monitoringen en niet de rol van minister overnemen bij het bepalen en uitvoeren van beleid. Toe baat hem mevrouw Vreedzaam bolle he. Oor volgens het assemblee staat Suriname met verwaarde olie en gasontwikkeling voor grote bestuurlijke uitdagingen. Bare mee telke bare mee. Ja, pe hem nu sajai kere klidus to. Abhi aanplu kohum ikar bare mee batabe. प्यारे प्यारे जनता यहां पे और न्यूज़ मामपुरुष के बताई है यहां लिखल है भैया यहां लिखल है भैया फरागा ले चले है ईरान के हुआ के जनता थक गए लड़िया से और बोले है कि द वेयर स्लॉट अ सिख फ्रॉम फॉरलिफ्टिंग अमेरिका ईरान के अतवार के जोन से एक मेमोरेंडम फॉर ओवरस्टेमिंग वाज ब्रेक ऑन बेना 4 महीना फॉर फैंडलिक हेडन तब एंड के 4 महीना इस अब ना लड़िए भैया और स्ट्रैट मान 13 में वार मैन uitgeput is door jaren van sancties en spanningen, heeft de aankondiging van de staakt het vuren weinig vertrouwen gewekt dat de crisis voorbij is, mensen. Toen hoe ik je ta bole 4 mahina ke bole ban hoi, ab bole hai jhagadwa kar baad mein ka hoi, tab ye the dimension se Parisa, ek student hai Tehran ke bole hai ga di vanwege veiligheid haar voornaam gebruik en het kan nu werken, maar beide partijen zullen hen ondermijnen op basis van hun eigen belangen. Sab apan eigen belang khat kare hamari janta. और आगे हम जाए भैया अरे भैया हम लोग कैफे पे सुरीनाम के ग्रिल रेस्टोरेंट थे भैया हां बोले हैं फेपेर बेज फंसिक अपना क्रिटिक बेस्टार बखरूटिंग बहांडलिंग तो ये भैया अब मुखोली से बोले हैं फरवेर तक द क्रिटिक दी बेज अनफ्राग फॉर द बखरूटिंग बहांडलिंग रखेरिंग के बोले जोन 11 बजे बोले शुरू भले बोले एंस्ट है बोले लाइ है स्टेल दैट द रखेरिंग वाज आउट voor 11 uur en niet voor 10 uur, zoals door sommige parlementariërs werd gesuggereerd. De ohike permisser bole he, 2 ghanta, 1.5 ghanta bole laatikal le baate. Aur ee bhaiya bole na hamlo ke 11 baje bulaya raha, 10 baje bulaya raha. Aur bole hamlo 11 baje pahunche to hame jana furukura ka. To this soort mensen, hoe kan je leiderschap hebben als je tenminste je afspraken niet houdt? Je moet tenminste je afspraken hebben, vicepresident bent u. Volgens Rusland heeft de regering het verleden zelf meermaals uren moeten wachten op de nacht. Je hebt niks te maken wat het verleden is, meneer Rusland. Jij bent nu de VP. Jij moet het namelijk zorgen dat die dingen allemaal netjes en correct en op tijd

और छलकी न जाई गोलियां, छलकी न जाई, बोले धीरे धीरे चलो और घगरी छलक न जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से और आगे को। अब देखो भैया, एगो लड़का, बड़ी दुख भरी कहानी है, कहानी ना समाचार है दोस्तों। एक बरिश के लड़का बल्टी में बुड़ के मर गए भैया। सूरीनाम देश लारवेई के बातचीत हुए हैं और बप्पा गए देखे तो बेटौआ एक बरिश के लड़का के मुड़ी बल्टी में नीचे है, गोड़ ऊपर है और नत्यूरक बल्टी में पानी रहा हुई भैया, और लड़का वही में बुड़ के मर गए है। बड़ी दुख के बात है। फरनीम दत किंच in the keuken met zijn hoofd in een met water gevulde emmer terechtkwam, waarna die kind is overleden mensen. Aur ye hum pe batayega bapua ladkwa ke haldi se bahre nikar ke aur oke kabule reanimer karisega, maar ladka na bachai paye se dosto, बाप लड़का ना बचा, इसे बड़ी दुख भारी कहानी है। ऐसे भैया एक आदमी लाश हो गया रहा, एक भाई लाश हो गया रहा और ओकर भाई ओके ढूंढे है, खोजे भैया लाश हो गया रहा। तो अब जाई के भैया मिलल है भैया, तब बोलिए कहाँ मिलल है भैया, एगो रास्ता का नाम अधीन वैक्सरी नाम में, और ये बेचारा के वहाँ पे ततई से टंगल रहा भाई, अनुमान क्रिक मान रख डिस्क्रिप्शन से लीफन तुन है से फॉर मिस्टर ब्रू लीफस लूज आंथर ऑफ अन बोम लॉन्ग द अधीन वैक् इन सूरीनाम। अब लोग पेड़ लगे होके मिलल है। फॉर नोमन वॉर द रिस्लॉक्ट ऑफ बुधवार से इलाज भैल असोमार के मिलल है। वारफान ओकर लेखाम फॉर केद ऑल इन फेयर स्टार फॉर उन बिंदी में से। ये भी एक बहुत दुख भरी दुख बात है, न्यूज है दोस्तों। साथ ही साथ भैया बोले जिसके हाथ में लाठी वही ले जाएगा भैंस। अब चिनवा भैया बंदूक ले ले और जंगल में है जहां सोना खुदा है, एकर मारे में पार्लियामेंटारियन प्लाटन फ्राक तेगर में अनवीच खेत स्वार बवापन द शिनीसन और फिर खोद फेल्डन में से कहने के। अब उस सबके विश्वास ना भैया, अपन फैल खेत सबन अपरे करे है, स्कोतु सुर जाति के हुआ विश्वास ना भैया, बोले उस फैल खेत ना कर पावे है। दारों द एकर बारे एनडीपी पार्लियामेंट रायमोन सपून बोले है सोमवार के दयाना में, बोले सोरखन खेत ओवर द बिल्डन जो सोशल मीडिया पे खावे कि स्वार चिनवानो बड़का बड़का बंदूक कैमोफ्लाश क्लेडिंग लेके और सोना जहां खोदे उस सबके हुआ बेनलात में से बनबा। एकर बारे में हनीश मनोरथ का बोले है, बोले एकर बारे में तू का बोले, बोले तू मिनिस्टर बाटे कौन सी बाटे। एसिक्यूटर सर वेगन द बिल इन द एरिया ऑन द हॉट विनिंग वार गवापन नीट नेशनल से डेमोंस्ट्रेटिव opstellen naar de gemeenschap toe. Our NDP Rabin Permeser bole bezorgdheid uit over de aanwezigheid van gewapende groepen in het binnenland. Daarnaast wees hij de grote hoeveelheden chemicalium die naar de grondvelden worden gebracht en de mogelijke gevolgen zoals van het milieu. Toen dus toe Amlun Janehe niet zo lang geleden वहाँ पे घर और तुरात रहा भैया और रहा दुई को प्रोजेक्ट रहा और वहाँ पे भी वापन बड़का बड़का बंदूक ले के सब पोखलाई के ऊपर बैठल और घर हुआ तुरात रहा भैया। तो एकर बारे में भी ऑफेल्डिंग मेरे के हुआ देशवा के स्कोतु के है स्कोतु के भैया सुर जाति के ही तो पर्टिकुलर हम निकला अपन एक फेलखेत खतीन बंदूक ले ले और वहां पर का बोले अपन अपन भवाक करे है। तो ये बात है जनता कि हमारा सूरीनाम में बोले जेकर हाथ में लाठी वही भैंस ले जाई तब बंदूक ले ले अपरे के करे है। और तू जाने है बंदूक के ताकत कितना जबड़ है भैया, जैसे अमर मोर्दन मराएगे कहीं कुछ ना भैल, हुआ मोईवाना के मराएगे कहीं कुछ ना भैल। तो जेकर हाथ में सूरीनाम में बंदूक है भैया वही जीते है। रोफट बंदूक ले चले आदमी के लूट लूट चल जा है, तो बंदूक भाई बड़ी ताकत। अब देखो फेल ऑफ हर पारा में बहु गंध मचल भैया, बड़ी
बड़ी गंध बचल है। बोले ऑन द ड्रग सेस मांदे बतालें अख्तर स्थान थे भैया लोग के। बोले है हम लोग 6 महीना पैसा ना पहली बाटी जोन जाए, लेकिन हम लोग घर के 2-3 महिला जोन उठाईला फेड ऑफ हाल इन डिस्ट्रिक्ट पारा स्थान ऑन द ज्वार ड्रग दो बतालें अख्तर स्थान हुआ के ऑन द नेम इस बोले है का अफाल फर सामलिंगन सामलिंगन देसे पैतृक कैंसन है wachten de uitvoerders al meer dan 6 maanden op hun vergoeding, waardoor de dierverlening in gevaar komt en hygiëne in het district onder de druk staat. Mensen, ondernemers kunnen kosten niet blijven dragen. Toen via regering kakere heen, ja, paisana bereid, onderwijs ke paisana bereid, heb ik ke paisana bereid, de bootwal ke paisana bereid, maar dit is geen nieuw mensen. Dit kennen we allemaal in Suriname, dat mensen jaren niks hebben gehad, oro, onderwijs gaan achterstaan. Ondernemers kunnen kosten niet blijven dragen. Hier wordt er samenwerken met de minister. Veld ophaal valt onder directoraat van openbare groen en afvalbeheer. Orken het kensenhuis willen regelmatig overleg. Karische minister van openbare werken zei. Hij gaf aan dat de volgende beschikbare informatie, administratieve voorbereidingen, grote dingen zijn afgerond en dat de uiteindelijk betaling afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de financiële middelen. Dat kan je zeggen. Weer bolle administratie. Bolle administratie. Hij zei, admin ook een koopkrachtversterking. Dan doen jullie toch je werk niet goed. De administratie achterstaan, Bart. Dan zijn jullie niet op tijd met jullie werk. Jullie moeten je lang gewoon goed draaien, mensen. Mensen moeten op tijd betaald worden. Zoals de boothouder, schoolmensen, leerkrachten. En nu de ophaaldiensten. Etradin ambtenaar de zo aan mijn kontje kregen. Om herhaling van de problemen te voorkomen, werkt de DC. Structurele oplossing, mensen. Bolle he, ihega. Broekopondo medusto. Jaape, para medusto. Jaapare. लोग पैसा ना पैसे तो यहाँ पे भैया हमारा रोनी ब्रेसवाइक का बोले रखेरिंग ही फिन बलांग्सटेलिंग इन फॉर हार एकन बखरूटिंग रखे रोनी ये कोई बोले आफत चीज बोले भैया और रोनी बोले हैगा बोले फंदाख बोले है खबेल को सिचुएशन दर्ज नेशनल असेंबली अंदर हाफ घंटा यूर लातिक आयल है और बोले हैगा जब आईबो करल है तब बोले प्लस फॉर 3:12 शुरू भइल है और हम लोग के फीपी जो बोले 12 ना 11 आस पर फ्राग मा आप सिटे यूली अलमान इन द डीएनए द लिखदार सिटे यूली द लिखदार मेंस De ene voorzitter van de DNA die zegt dat er 10:00 afspraak was. En de vicepresident die zegt 11:00 hadden we afspraak. Maar dat begon om 12:00. Dus hoe dan ook, of het 10:00 is of 11:00. U bent gewoon te laat. De voorzitter schoof zijn kritische kanttekenen beslist niet onder de stoelen of banken. Brunswijk bolle hegei karbare mee. Bolle eigen begroting, hij vindt het een kwalijke zaak dat op dergelijke wijze wordt omgegaan met het parlement. Op de Brunswijk beklemtonen dat deze kwestie absoluut geen ongeplande situatie betreft, maar de materialen van zwaarwichtige ardimanden van tevoren is besproken. Toen Brunswijk, ik erbarm me van ja, hoe aap het matjai ze. En dan geef ik hem groot gelijk, mensen. Mensen moeten ze werk goed gewoon doen. Abouan Kabole, degene die het gat hebben gegraven, klagen vandaag, Wang, ja, weken, bolle, holowa, tulo, aprik, hodle, bolus, op klakkere, van het heugen, hoestraatje, holwon, baradise, kodele, bhaiya. Ah, 2000, zoveel, ze kan niet ketra, ketra, desam, loke, chichakke, leder, hoige. Oi, bolle, als wij geld lenen om oude schulden te lossen, waar is dan de economische productie die ervoor zorgt dat we in de toekomst minder hoeven te betalen, werd vandaag per voorgehouden door de VHP-assembleelid Gangarai Wang in de Nationale Assemblee. Vandaag is het hoogste college van de staat een aanvang gemaakt. Begroting kebaren mee, behandeling kebaren mee. तो ये जो बखरूटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आप देखो बैतलांस साका के मिनिस्टर के है भैया हम लोग के आउट फोर्सेतर फाने दिया ना और वो हैगा मनीष्वर भी अब वो है के मिनिस्टर फान बैतलांस साका के अब वो क्या बोले 51 दर्जन अमतनारन
के बोले हम लोग पैसा ना भरेला, बोले एने फाइव तक दैसे आदमी के हम लोग परसोल के आदमी के हम लोग पैसा भरेला, पता ना वो सब आमतनार है कि ना, मैं बोले एने फाइव तक दैसे आदमी बोले हम लोग पैसा भरेला आमतरान अपराध, तब वो सबके आदमी से राशि क्लब ना हुए भैया अब तय ना रहे है तो का कोप क्राफ्ट स्टेरकिंग के पैसा ना भरा है, अब हाल के पैसा ना भरा है, स्कूल के एक्स्ट्रा जो सामान कमाई से ना भरा है, तो एन फाइव तक दैसन के वेल पैसा भरा है अमतनार के दत मार्ग द मिनिस्टर बिनान से साक मरी न्यूज फ्रॉम बी बकेन फॉल द बमिस मांस इज द हुडिकल सिचुएशन बड़ी सन से scheef gegroeid en zijn structurele maatregelen noodzakelijk om orde op zaken te stellen. यहां पे बताए गए है एक बारे में डिस्कशन पहले बोले 2000 सो genoemde स्पूक अमतनार रहेगा जो कभी काम पे ना आवे 2000 आदमी के पैसा भरा है एंड पर्सोनन फन विद अनवेजेगेट एंड werkzaamheden nader onderzocht moeten worden. Daarbij gaf hij aan dat de overheid niet langer alleen spreekt die 51.000 ambtenaren hè, maar over circa 51.000 personen die door de staat worden betaald als ambtenaar. Ik spreek niet meer over 51.000 ambtenaren, maar over 51.000 mensen die door de overheid worden betaald als ambtenaar. Al dus de minister, er wordt een verschil tussen personeel bestand en dienstverlenging. De ego screen corona bija kon admin awe kampe, kon admin na awe hè. Omscholing en herplaatsing. De regering werkt volgens de minister aan een traject om overtollig personeel om te scholen en waar mogelijk te begeleiden. Tot dus toe, kap hamar de swa sudhari bhaiya, sudhar jao, sudhar jao, sudhar jao, padal padal admi hai, maar als u ziet namelijk hun ontwikkeling, namelijk in een land hoe je bepaalde dingen moet aanpakken, dan laat het de wensen over mensen. Laten we daar zeker erover nadenken. Hoe gaan wij ons land namelijk vooruitbrengen? Ik hoor van hoge straten op Bari Bari Holla. Oh ja, het is een troebele spiegel geworden van het land. Een spiegel waarin onze rechtsstaat, onze bestuur, internationale financiering, uiteindelijk ook het vertrouwen van de burger samenkomen. Op iedere partij lijkt namelijk gelijk te hebben en toch verliest iedereen. Of beter gezegd, de samenleving, die verliest mensen.

मई तो लाई है कौची मजेदार लाए ही और उस्तादों के उस्ताद हरीश बालक का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर, वो क्या गाते हैं।

कठिनी भिनी छोरा। तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या, और रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

सुगनवा तू और पांती मोरा ले जान सुगनवा तू। कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो, तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सूरीनाम के हम याद करते हैं। और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसई डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।

और सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दूबे। उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा की ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं। बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

और कन्हैया कन्हैया पुकारा करे देवी दीन घुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी भैया, बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे, सूरीनाम देश में बहुत मशहूर गीत थे और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

Als er maar een goeie is, dan gaat het om wie dan ook mensen. Tja he, jo bhi mile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kal ka zong, dosto, koi zamana mein. Aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने ज़माने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे, तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर। फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

भी नहीं, ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे, और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद, और वो है भिखारी। भिखारी सॉन्ग को गए थे, आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग। आज जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

भी छेद लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं। और जो स्कॉर्पियन जो छेद लेंगे भैया, तब तो उसको दवा दारू कुछ और है। और जब बरैया छेदी तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर। और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

और दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बातचीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। आप लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

और आज की रात क्या होगा, रात छोड़ो चलो हम लोग बम्बई का रानू देखा जाए।

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब

कयूम है वही कायम, कोई रहता नहीं यहाँ दायम, ये समझते हो।

आंच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट ऑन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बांती, चोली के बांती क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. Dance and party time.

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एंट्री मारे बेरियो फन हैप्पी ऑल टेड एंट्री सेंसेशन
1: चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन।

0: ओ नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाए
1: दोस्तों। मुकेश भाई थी मुकेश, करोड़ों को करोड़ों का दिल चुराने वाला, हार्ट ऑफ मिलियंस, और वह माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र।

उम्र लग जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ है करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

0: पसंद होगा, वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारों,
1: je hebt ons gevonden, laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026.

और तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, चाहे श्रीनाम में रहोगे या जहां भी रहेगे, तेरे धड़कन से पहचानूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

बदल न जाना मौसम की तरह, मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शराबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी के नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पर्सन दो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिस नई खंत क्रिया यारा नई खंत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्ने 1990। It's

फन हुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 907 तक 3 5 7 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

मदद करने को ये सॉन्ग दे। और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन, और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जोंग, और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइकी मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस इस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांझ करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा। निकट होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: tijd.
1: Zo, die kan naar een cool best pro.
2: Yes, doosto. To ye kuche. बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्त।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: इस मूवी में, और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का। ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं। नौजात के साथ में
1: ना दिल टूटे ना।
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग, आशा भोसले, मधुबाला, अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं, हावड़ा ब्रिज।

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।

फाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

छोड़ दो, ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो। और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर, और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. It's the dance and party time. Full heart.

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: रे नौ एन टी मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन।

नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जा

हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस साल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

जिससे भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाला है फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार, और फिल्म का नाम है कति पतंग, गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या इकती पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा, मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे है आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल, लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ऐ हवा, थम जा ऐ बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखें तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चलो। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

0: दिल तुम्हारा।
1: मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आप

के घर पर है तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी के सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में। आप बुलाए और मैं ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, हमेशा की तरह जब मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती हूं तो एक भजन से मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती है यानी हूं, और आज की इस हसीन रविवार की सुबह की प्रोग्राम में चलिए ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं। आप सभी के वास्ते मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जुबिन नौटियाल जी आपको सुनाने वाले हैं।